संसारो नान करुणा बाबा जानिए जे रोवे लाए प्यारो वाले बेकारण बाबा रोई है रोवण सगल बेकारो रोवण सगल बेकारो गाफल

प्यारो वडहंस महला पहला आवो मिलो सहेली हो सचड़ा नाम लए हां रोवह बिरह तन काय अपना साहिब संभाले हां साहिब संभाल है पंत ने हाल असा पियो थे जाना।

तेरा करता तेरा सब कुछ है जो दें सो पावे सदा शिव सला तेरे नाम मन वसावे नाम जिन के मन वसिया वादे शब्द कनेरे कह नानी सच्चे साहिब क्या नाही कर तेरा साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया कर शां सुख मन आए वसिया जन इच्छा सब पुजाइया सदा कुर्बान किता गुरु बिटो जी दियां वडियाइयां कहे नानक सुनाओ संतो शब्द तरो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शब्द कर सुपागे कर सुपागे शब्द वाजे कला जित कर तारिया पंच दो तदवास किते काल कंठ को मारिया तुर करम पाया तुजन को से नाम हर के लागे कहे नानक तसको अतित कर अनहद वाजे अन सुनो बड़ भाग

अंतले छड़ाया एक ओंकार सतगुर प्रसाद श्लोक महला पहला दुख दारू सुख रोग पया जा सुख ताम ना होई तू करता करना मैं नाही जाहों करी न होई बलिहारी कुद

गावन तुदनो पौन पाणी बेसंतर गावे राजा धर्म द्वारे गावन तुदनो चित्त गुप्त लिख जानन लिख लिख धर्म चारे गावन तुदनो ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन तेरे सदा सवारे गावन तुदनो इंद्र इंद्रासन बैठे देवत्या अंदर नाले गावन तुदनो सिद्ध समाधि अंदर गावन तुदनो साध विचारे गावन तुदनो जति सती संतोखी गावन तुदनो वीर करारे गावन तुदनो पंडित पढ़न रखीसर जुग जुग वेदा नाले

68 तीर्थ नाले। गावन तुदनो जोध महावल सूरा, गावन तुदनो खाणी चारे, गावन तुदनो खंड मंडल ब्रह्मंडा कर कर रखे तेरे तारे।

सेवै जो सेवै तुझी जन नानक तिन कुरबाना हर त्यावै तुझी से जन जुग में सुखवासी से मुक्त पै जिन हर त्याया जी तिन टूटी जम की फासी।

तू निश्चल करता सोई, तुदे आपे भावे सोई वरते जी, तू आपे करे सोई, तुदे आपे सृष्ट सब उपाई जी, तुदे आपे सिर सब गोई। जन नानक गुण गावे करते के जी, जो सबसे का जन होई। आसा महला चौथा।

छाड़ कोई अवर ना त्याओ जो बर चाहो सो तुम ते पाओ सेवक सिख हमारे तारी है चुन चुन सत्र हमारे मारी है आप हाथ मुझे वरी है मन कार का त्रास न वरी है।

सोई गुरु समझो हमारा नमस्कार तसी को हमारी सगल प्रजा जने आप सुवारी सेवकन को सब गुण सुख दियो छत्रन को पल मोहमद कियो कट कट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत चीटी ते कुंचर स्थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी

तत्कालम कृपा दृष्ट तन जाय न हरिओ ताके ताप तन कमो हरिओ रिद सिद्ध कर्मो सब होई दुष्ट शास्व सके ना कोई एक बार जन तुम्हें संभारा काल पास ते ताए वारा जिन नर नाम त्यारो कहा दर्द दुष्ट दोख तेरा खड़ केत में सरण त्यारी आबाद लो बारी सर्व ठौर मोह साई दुष्ट दोख ते लो बचाई कृपा करी अंपर जग माता ग्रंथ करा पूर्ण सवराता किल विख सकल देख को हरता दुष्ट दोखियन को शय करता

सुने गुंग जो जाय सरस न पावे, सुने मूर्छित लाए चतरता आवे। दुख दर्द पाओ निकट ना तिन नर के रहे, हों जो जाकी एक बार चौपे को कहे चौपे। सम्मत सत्रह सहसपुन जय अर्ध सहसपुन तीन कहे जय। पाद्रव सुधि अष्टम रविवारा तीर्थ तद्रव ग्रंथ सुधारा। इत श्री चरित्रोपख्या ने त्रिया चरित्रे मंत्री भूप संबंध 405 चरित्र समापत। मस्त शुभ मस्त हमसजू।

अपना जान मुझे प्रत परिय चुन चुन सदर हमारे मरिय देख देख जग में दो चले राख्या मोय उन दल है तुम हम करो सदा प्रत पारा।

दा जान दे हाथ उभारो हमरे सबैरियन संगारो प्रथम तरो बहुत को ध्याना बोर करो कविता विद नाना किसन जथा मत चरित्र उचारो चूक होए कवले सुधारो।

हर हर जन दुई एक है, बिब विचार कृष्णा कछ नाए, जलते उपज तरंग ज्यों, जल ही बिखे समाए दोए राम।

ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाए वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर के गुरु नानक लईं त्याए फिरंगत गुर ते अमरदास रामदासें हुई सहाए अर्जन हर गोबिंद नु सिमरऊ श्री हर राय श्री हर कृष्ण ते आईए जिस डिठे साहब दुख जाए तेग बहादुर सिमरिया करनाउन दयावे ताई सब थाई होए सहाय दसवें पातशाह साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी सब थाई होए सहाय दसवें पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के पाठ दीदार दा ध्यान तरके बोलो जी पंजा प्यारिया चौहान साहबजादियां चालिया मुक्तिया शहीदां मरीदा हठियां जपिया तपिया सिदकवाना जिन्हां नाम जपिया वंड की छकिया देख चलाई तेग वाही देख के अंडिठ कीता सचारियां प्यारियां दी कमाई दा ध्यान तरके बोलो जी जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धारम हे सीस दिते बंद बंद कटाए खोपरियां लुहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े ताना रहण नाल चरवाए सिखी सदक किसां स्वासां संग निभाई तिन्हां दी कमाई दा ध्यान तरके बोलो जी पंजां तख्तां सरबत गुरद्वारियां दा ध्यान तरके बोलो जी प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी कहो वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु चेतावे चेतावन का सदका सर्व सुख होवै जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रख्या रहाय देग तेग फतेह बिरद की पैज रहे पंथ की जी श्री साहिब जी सहाय खालसा जी के बोल बाले बोलो जी सिखा नू सिखी दान केस दान रहत दान बबेक दान विशाह दान भरोसा दान दाना सरदान नाम दान श्री अमृतसर साहब जी के दर्शन शनान चौंकियां झंडे बंगे जगो जुगा टाल धर्म का जयकार बोलो जी सिखा दा मन नीवा मत उच्ची मत का राखा आप वाहिगुरु हे अकाल पुरख वाहिगुरु अपने पंथ दे सदा सहाई दा तार जीओ श्री ननकाणा साहब ते होर गुरद्वारियां गुरधामा दे जिन्हों तो पंथ नूं विछोड़िया गया है तिन्हां दे खुले दर्शन सेवा समालता दा दान प्यारे खालसा जी नूं बख्शो नमाण्यां दे माण सतगुरु नताण्यां दे ताण न्योटियां दी ओट न्यासरियां दे आसरे सच्चे पिता वाहिगुरु जी धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी अरदास बेनती है आप जी दियां महान बख्शिशां रहमतां दा सदका पावन हजूरी विखे संध्या वेले दे दीवान सजे सजे हुए दीवाना विच सोधर रहराज शिव जी दे पाठ होए बाणी पढ़दियां सेवकां पासों अनेकां भुल्लां हो गईयां होणगियां पग जान के खिमा करनी अगों वास्ते शुद्ध ते स्पष्ट बाणी पढ़न दी सावधानता बल ते जाओ बख्शिश करना अमृतमई बाणी दा पहाओ दर आईयां संगतां दे हिरदियां च विसावना सरबादियां तिल फुल पेटावां दर प्रवान करनियां दरों करों नामदान सिखी सिदक भरोसे की दात बख्श के कृतार्थ करना पावन दरबार की हाजी भरदे गुरसिख परिवारों वालों अरदासा बेनतियां ने दर घर के सेवक भाई मलकीत सिंह के परिवार वालों परिवार की तंदुरुस्ती चढ़ती कला लई अरदास बेनती है सतगुरु जी रहमत करनी शीश ते रहमतां प्रयात रखना दर घर के सेवक सरदार तारा सिंह जी गिल की तंदुरुस्ती लई परिवार वालों अरदास बेनती है सतगुरु जी मेहर करनी सेवक परिवारां दे सिर ते रहमतां प्रयात रखना परिवारां विच सुख शांति आनाम बाणी नाल प्यार गुरसिखी जीवन तंदुरुस्तियां दी दात बख्श के कृतार्थ करना अंग संग सहाई होना बख्शे हुए खजानियां विचों समूह संगतां वल्लों कड़ा प्रसाद दी देग दर ते हाजर है परवान होया प्रसाद सरबत साध संगत च वरताउण दी आग्या होवे पावन हुक्मनामे बख्श के संगतां नूं कृतार्थ करो सही प्यारे मेलो जिन्हां मिलिया तेरा नाम चेता आवै नानक नाम चढ़दी करा तेरे भाणे सरबत दा भला

परम सम्मान योग चुको चुक अटल चवर शतर तखत दे मालक धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर सुभाईमान गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जीओ अते मीडिया राही गुरु चरणा नाल जुड़ बैठी साध संगत जीओ आप सारे बड़भागी हो तंता दे योग हो जो सतगुरां दी पावन बाणी अमृतमई बाणी सरवण करके आत्मक आनंद माण रहे हो अपना यह मनुखा जन्म सफला कर रहे हो। आओ रेंदे समय विच गुरमत विचारां दी सांझ पा सकीए। विचार आरंभ करन तों पहलां सतगुरां दी बख्शी हुई फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

मैं नाही कछ हाऊ नहीं किश आहे ना मोरा। बड़े कमाल दी गल, पहला कछ वरतिया ते फिर किछ वरतिया, पर अर्थ दोनों दे इको ही ने, बणतर वक्री बना दिती दोनों दी। मैं नाही कछ हाऊ नहीं किछ आहे ना मोरा, वाहिगुरु जी मैं कुछ भी नहीं हाँ, मेरा कुछ भी नहीं है, सारा कुछ तेरा दिता होया, मेरा कुछ भी नहीं। किश जी अपनी अख बस, मैं तो इन्नी को गल जानदा, अवसर लज्जा राख ले हो साधना जन तोरा। मैनू एक अवसर मिला है, अवसर यह मिलिया कि मैनू ये मनुखा जन्म मिलिया। वाहिगुरु जी कृपा करी, बस ये मनुखा जन्म जिहड़ा मैनू मिलिया है, बस मेरी इज्जत रख ली, ते इज्जत यह रखी कि इस जन्म विच मैनू विकारा तो बचा के रखी। बड़े कमाल की गल। ते गुरदेव पातशाह पंजवें पातशाह जी कहिंदे ने, जिसके सिरू पर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे। वाहिगुरु जी जिस मनुख दे सिर उत्ते तेरा मेहर भरिया हथ होवे, उसनू कोई दुख नहीं लगता, उसनू कोई दुख दुखी नहीं कर सकता। बोल ना जाने माया मदमाता, मरना चीत ना आवे। जिस मनुख दे सिर उत्ते तेरा मेहर भरिया हथ होवे, वाहिगुरु जी उस मनुख दे कोल माया भावें जिन्नी मर्जी होवे,

गुरु को वेश ने को बाबा जाकर करते कीर्त आखियां करते को चारो तितगर गावो सोयला शिवरो सिर जनहारो तुम गावो मेरे निरपव सोयला हों वारी जेत सोयले सदा सुखे।

गुरुदेव ए नमः अष्टपदि सिमराओ सिमर सिमर सुख पावो काल कलेश तन माह मिटावो सिमराओ जास विषम पर एक नाम जपत अगंत अनेक वेद प्राण सिमरत सुदाख्य हर किन्ने राम नाम एक आख्य हर किनका एक जेह जीव सावे ताकि महबा गरी नावे काखी एक दरस तुहारो नानक गुण संग मोहे उदारो सुखमनी सुख अमृत प्रभ नाम भगत ना कह मन विश्राम रहाओ प्रभ कह सिमरन गर्भ ना बसै प्रभ कह सिमरन दुख जम नसै प्रभ कह सिमरन काल पर हरै प्रभ कह सिमरन दुश्मन टरै प्रभ सिमरत काछ बिगल ना लागै प्रभ कह सिमरन अण दिन जागै

हरिरंग ब्राव कै सिमरन रिद्ध सिद्ध नव निध ब्राव कै सिमरन ज्ञान ध्यान तत् बुद्ध ब्राव कै सिमरन बिनसै ब्राव कै सिमरन जप तप पूजा ब्राव कै सिमरन बिनसै दूजा ब्राव कै सिमरन तीर्थे स्नानी ब्राव कै सिमरन दरगह मानी ब्राव कै सिमरन होय सुफला ब्राव कै सिमरन सुफल फला से सिमरह जने आप सिमराय नानक ता कै लागो पावे प्रभु का सिमरन सब ते ऊंचा प्रभु कै सिमरन उदरे मूचा प्रभु कै सिमरन त्रिसना भुजाय प्रभु कै सिमरन सब कै सुजाय प्रभु कै सिमरन नाही जमतरासा प्रभु कै सिमरन पूर्ण आसा प्रभु कै सिमरन मन की मल जाय अमृत नाम रिद मह समाय प्रभु जी बस है सादगी रसना नानक जानका दासन दसना प्रभु कव सिमरह से तनवंते प्रभु कव सिमरह से पदवंते प्रभु कव सिमरह से जन प्रवान प्रभु कव सिमरह से पुरुख प्रधान प्रभु कव सिमरह से बेमहताजे प्रभु कव सिमरह से सर्व के राजे प्रभु कव सिमरह से सुखवासी प्रभु कव सिमरह सदा विनाशी सिमरन ते लागे जने आप दयाला नानक जन की मंगैर वाला प्रभु कव सिमरह से परपकारी प्रभु कव सिमरह तन सदबरहारी प्रभु कव सिमरह से मुख सुहावे प्रभु कव सिमरह तन सुख विहावे प्रभु कव सिमरह तन आत्म जीता प्रभु कव सिमरह तन निर्मल नीता प्रभु कव सिमरह तन अंध घनेरे प्रभु कव सिमरह बसहे हर नेरे संत कृपा ते अंधन जाग नानक सिमरन पूरै भाग प्रभु कै सिमरन कार्ज पूरे प्रभु कै सिमरन कबह न झूरे प्रभु कै सिमरन हर गुण बानी प्रभु कै सिमरन सहज समानी प्रभु कै सिमरन नेह चल आसन प्रभु कै सिमरन कमल बिंगासन प्रभु कै सिमरन अनहद चुन कार सुख प्रभु सिमरन कांत न पार सिमरह से जन जन कौ प्रभु मया नानक तन जन सरणी पया हर सिमरन कर भगत प्रगटाए हर सिमरन लंग बेदी उपाय हर सिमरन पै सिद्ध जति दाते हर सिमरन नीच चह कुंट जाते हर सिमरन धारी सब धरना सिमर सिमर हर कारण करना हर सिमरन कियो सगल उकार हर सिमरन मह आप निंकार कर कृपा जिस आप बुझाया नानक गुरमुख हर सिमरन तिन पाया श्लोक दीन दर्द पंजना कड़ कड़ नाथ अनाथ शरण तुम्हारी आयो नानक के प्रभ साथ अष्टपदी जह मात पिता सुतमीद न पाई मन ऊहा नाम तेरे संग सुहाई जह महापयान दूत जम दलै तह केवल नाम संग तेरे चलै जह मुश्किल होवे अत भारी हर को नाम खिन माहि उधारी अनक पुनः चरण करत नहीं तरै हर को नाम कोड़ पाव पर हरे गुरमुख नाम जप मन मेरे नानक पाव सुख कनेरे सगल श्रेष्ठ को राजा दुखिया हर का नाम जपत होए सुखिया लाह करोरी बंधन परे हर का नाम जपत निहतरै अनक माया रंग देख ना बुझावे हर का नाम जपत आगावे देह मार गेह जाते केला तह हर नाम संग हो तु सुहेला ऐसा नाम मन सदा तिहाई है नानक गुरमुख परम गत पाई है छूटत नहीं कोट लाख बाही नाम जपत तह पार प्राही अनक बिघन जह आए सिंगारे हर का नाम तत्काल उधारे अनक जौन जन मैं मर जाम नाम जपत पावे विश्राम

संग जिह मार के गण जहन को सा हर का नाम हा संग तो सा जिह पैंडे महान गुबार हर का नाम संग उजियार जहां पंथ तेरा को ना सिंजानू हर का नाम तह नाल पछानू जय महापयान तप्त बहु काम तहे हर के नाम की तुम ऊपर श्याम जहां त्रिखा मन तुझ अकरख तह नानक हर हर अमृत बरख भगत जना की बरतन नाम संत जना कै मन विश्राम हर का नाम दास की ओट हर कै नाम दुरे जन कोट हर जस करत संत दिन रात हर हर औखद साधक मात हर जन कै हर नाम निदान पार ब्रह्म जन कीनो दान मन तन रंग रते रंग एकै नानक जन कै बिरत विवेकै हर का नाम जन कौ मुगत जुगत हर कै नाम जन कौ त्रिप्त भुगत हर का नाम जन का रूप रंग हर नाम जबत कब परायन भंग हर का नाम जन की वड्याई हर कै नाम जन शोभा पाई हर का नाम जन कौ भोग जोग हर नाम जबत कह नाहि वियोग जन राता हर नाम की सेवा नानक पूजै हर हर देवा

नाम संत दर्द दुख लथा नाम की महिमा संत रिद वसै संत प्रताप दुरत सब नसै संत का संग वड भागी पाई संत की सेवा नाम ते आई है नाम तोल कछवर न होए नान गुरमुख नाम पावे जन को श्लोक बहुसात्र बहुसिमृति पेखे सर्व डोल पूर सुनाही हर हरे नानक नाम अमोल अष्टपदी जाप ताप ज्ञान सब ध्यान खर सात्र सिमरत वख्यान जोग अभ्यास कर्म त्रम क्रिया सगल त्याग बन मध्य फिरिया अनेक प्रकार किए वो जतना पुन दान हो मैं बहुरत्ना

मुख संजम अत साधन निमुख निमुख कार श्री हिर कटावे तव पिहा में मैल न जावे हर के नाम साम सर कह नाहे नान गुरुमुख नाम जपत गत पाहे।

समझाए पूरा। कहां विष्णु पद कहां विष्णु पद गावे गुंग जतन करे तौ पिहि सुर भंग। कह पिंगल पर्वत पर भवन नहीं हो तू हां उस गवन करतार करना मैं दीन बेनती करे नानक तुमरी कृपा तरे। संग सहाई सो आवे न चीत जो बैराही ता से प्रीत बलुआ के गृह भीतर बसे।

कर कर्म तूठ आकर तुम पहरदास जियो पिंड सब तेरी रास। तुम मात पिता हम बारक तेरे तुमरी कृपा मह सुह कनेरे कोई न जान है तुमरा तू चेते उचा भगवंत सगल समगरी तुम रह सूत्र धारी तुम ते हो सुहाग्याकारी तुमरी गत में तुम ही जानी नानक दास सदा कुरबानी श्लोक देन हार प्रभ छोड़ कै लाग्यान सुहाय।

का विश्वास न हो वै जिसकी बसत तिस आज्ञा राखे प्रभु की आज्ञा माने माथे उसते चौगन करे निहाल नानक साहिब सदा दयाल नानक पहात माया कहेत सर पर होवत जाने अनेत बिरख की छाया स्यों रंग लावे ओह बिनसै ओह मन पछतावे जो दिसै सो चालन हार लपट रहे तह अंधार

लुभावे मिथ्या तान नहीं पार पकार मिथ्या बाहने विकार भिन्न भुजे मिथ्या सब पहे सफल देहे नानक हर हर नाम लय वृथि सागत की आर जा साज बिना कहे उत सुचा वृथा नाम बिना तनयांद मुखे आवत ता कै दुर्गंध

भावत नेरा उपाम सियान सगल ते रहत सब कह जाने आत्म की रहत जिस पाव है तिस लय लड़ लाय थान थ्रंत्र है आसमाय।

बृहस्पति देह प्रसाद शतीह अमृत खाए तिस ठाकुर कौ राख मन माहे देह प्रसाद सुगंध तन लावे तिस कौ सिमृत कर परम गत पावे देह प्रसाद बसे सुख मंदिर तिसे त्याय सदा मणि अंदर देह प्रसाद गृह संग सुख बसनाड पहर सिमरह तिस रसना देह प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा त्याई है त्यावन जोग देह प्रसाद पाड़ पटंबर हंडावे तिसे त्याग काते अवर लुभावे देह प्रसाद सुख सेज सोई जय मन आठ पहर ताका जास गावी जय देह प्रसाद सबको माने मुख ताको जास रसन बखाने देह प्रसाद तेर रसता धर्म मन सदा त्याय केवल पार ब्रह्म प्रभ जी जपत दरगह मान पाव है नानक पासे ती कर जावे देह प्रसाद आरोग कंचन देही लेव लाभ तिस राम स्नेही देह प्रसाद तेरा ओला रहत मन सुख पावे हर हर जस कहत देह प्रसाद तेरे सगल छिद्र ढाकै मन सरणी पर ठाकुर प्रभ ताकै देह प्रसाद रुको न पहुचे मन साफ साफ सिमरह प्रभु चे देह प्रसाद पाई दुर्लभ देह नानक ताकी भगत करे देह प्रसाद भूखण पहरी जय मन तेह सिमरत क्यों आलस की जय देह प्रसाद असव हस्ते सवारी मन तेह प्रभ को कबहु ना बिसारी देह प्रसाद बाग मिलिख तना राख परोए प्रभ अपने मना जन तेरी मन बंत बनाई उठत बैठत साध तिसे त्याही जोए।

सावे सत्संग धर्म राय करे सेवा साधक संग शोभा सुर देवा साधु कै संग पाप लायन सत्संग अमृत गुण गायन साध कै संग सर्वथान गम नानक साध कै संग सफल जनम साध कै संग नहीं कर काल दर्शन भेटत होत निहाल साधक संग रूहत हरे साध कै संग नरक पर हरे साधक संग ईहा ऊहा सुहेला सत्संग बिछरुत हर मेला

परिवार ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागत ब्रह्म ज्ञानी त्यागत ब्रह्म ज्ञानी कै मन परमानंद ब्रह्म ज्ञानी कै कर सदानंद ब्रह्म ज्ञानी सुख निवास नानक ब्रह्म ज्ञानी का नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश है ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का वेता ब्रह्म ज्ञानी एक संघ हेता ब्रह्म ज्ञानी कै हो अचिंत ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत ब्रह्म ज्ञानी जिद करे प्रव्याम ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाइय ब्रह्म ज्ञानी कौ बाल बाल जाइय ब्रह्म ज्ञानी कौ खोजे महेश्वर नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नाहे ब्रह्म ज्ञानी कै सगल मन माहे ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने पहित ब्रह्म ज्ञानी को सदा देश ब्रह्म ज्ञानी का कथे न जायद अखियर ब्रह्म ज्ञानी सर्ब का ठाकुर ब्रह्म ज्ञानी कीमत कौन बखाने ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने ब्रह्म ज्ञानी काम तरह पार नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार

ज्ञानी सर्व का तनि श्लोक उर तार है जो अंतर नाम सर्व में पेख है भगवान निमुख निमुख ठाकुर नमस्कार नानको अपरस सगल निस्तारे अष्टपदी मिथ्या नाही रसना परस मन मह प्रीत निरंजन दर्श पार त्रय रूप न पेखे नेत्र साध की टैल संत संग हित करना सुने काहू की निंदा सब ते जाने आपस को मंदा गुर प्रसाद विख्या पर हरे मन की बासना मन ते टरे

होए पिहन, कर्म करत हो वै निह कर्म तिस बहनो का निर्मल धर्म काहू फल की इच्छा नहीं बाँचे। केवल भगत कीर्तन संग राचाय मन तन अंतर सिमरन गोपाल सावी ऊपर होवत कृपाल।

तेन होवत्याम तुम प्रगास कई कोल तत् के बेते सदा निहार एको नेत्रे कई कोल नाम रस पीवे अमृत पै सत सद ही जीवे कई कोल नाम गुरु गावे आ तुम रस सुख सह समावे

विकराल, कब हूँ सर्व की उतरवाल, कब हुए बह बड़ राजा, कब हो पे खारी नीर का साजा, कब अब की रित में है आवे, कब पढ़ा पढ़ा कह आवे, जो प्रभ राखे ते वही रहे, गुर प्रसाद नानक सच कहे, कब हुए पंडित करे बुख्यान, कब हूँ मोन तारी लावे ध्यान, कभू तरती थे स्नान, कभू सिद्ध सात बहु ज्ञान, कभू की टह तंग हुए जियान, कजोन पर मह परमिया, नाना रूप जो सवंग दिखावे, जो प्रभ पावे ते विद जावे, जो तिस पावे सोई होए, नानक दू जावर न कोई, कभू सात संग ते पावे, उसे स्थान ते बहुर न आवे, अंतर हुए ज्ञान प्रगास, उसे स्थान का नहीं विनाश, मन तन नाम रत एक रंग सदा बसे, पार ब्रह्म के संग ज्यों जल में जल आए, एक टन त्यों ज्योति संग जो

लावे सगले बिरथारे अनकत पसया करे अहंकार नरक सुरग फेर फेरे अवतार अनक जतन कर आत्म नहीं द्रवे हर दर गए कहो कै सिंगावे गावे

करता तबला गर्भ जोन में फिरता। जब तार को बैरी भी तबलाग नहीं चलना ही चीत जब लग भो मगन संग बाय तबलाग तरफ राय देश जाए प्रभु कृपा ते बंधन टूटे गुर प्रसाद नानक हम छूटे सहस खटे लाख उठतावे त्रिपुत नावे माया पाछे पावे अनक भोग बिख्या के करे नह त्रिपतावे खाव खाव मारे बिना संतोष नहीं को राजे सुपन मनोरथ वृथ सब सुपन मनोरथ वृथे सब का जय नाम रंग सर्व सुख हो बड़े भागी किसे प्राप्त होए करन करावन आपे आप सदा सदा नान कर जाम करन करावन करने हार के हाथ कहां विचार।

कैसोय अपने चलते आप करने हार कवतक करे रंग अपार मन मेहा मन प्रेमाय नान कीमत कह न जाए सत सत सत प्रभु स्वामी गुर प्रसाद किने वख्यानी सच सच सर सब कीना कोट मदे किने बिरले चीना भला भला भला तरह रूप अत सुंदर पारे रूप निर्मल निर्मल निर्मल तरी बाणी घर घर सुनी सरबन बख्याणी पवित्र पवित्र

संत का दुख सद मिथ्या कहत कीर्तन कातर ही पया नानक ज्योत भाव सोई थिया। संत का दुखी बिग रूप हो जाए, संत के दुखी कहो दर गए मिले सजाए। संत का दुखी सदा सहकाई, संत का दुखी ना मारे ना जीवाई है। संत के दुखी की पुजे न आसा, संत का दुखी उठ चले न आसा। संत के दुख न त्रिस्ते कोई जैसा भावे तैसा कोई होए। पया किरत न मेटे कोय नानक जाने सच्चा सोए। सब कर तिस के हु करने हार, सदा सदा तिसको नमस्कार। प्रभु की उस्तुत करो दिन रात, तिसे त्याव सांझ ग्राह। सब कछु वरते तिसका किया जैसा करे तैसा कुथिया।

मन मेरे सदा हर दया विनासी प्रभ आपे आप आपन किया कछु न होए दे सौ प्राणी लोचे कोए आपन किया कछु न होए दे सौ प्राणी लोचै कोए तिस बिन नाही तेरा किस काम गत नानक जप एक हर नाम रूपवंत होए नाही मोहे प्रभ की जो सगल घर सोहे ध्यान धनवंता होए क्या गुगर भेजा सब किस तिसका दी

कौन बस्त आई तेरे संग लपट रहे हो रस रोबी पतंग राम नाम जबिर दे माहे नानक पास ती कर जाए जिस बकर को लै तू है राम नाम संतन कर पाया ताज भाले हु मन बोल राम नाम हृदय में तोड़ लाद खेप संते संग चाल वृते आग बिखिया जंजाल धन धन कह सब कोय मुख जिल हर दर गए सोए एहो वाह पार विरला वाह पारे नानक ताके सद बलिहारे चरण साध के धोए धोए पियो अर्प साधक अपना जी ओ साधक दूर कर स्नान साधु पर जाइए कुर्बान साध सेवा वड भागी पाइए साध संग हर की

राखै। अपने दास कहो देव डाई, अपने सेवक कहो नाम जपाई, अपने सेवकी आप पत राखै, ताकि गत मित कोई न लाखे। प्रभु के सेवक कहो को न पहुँचे, प्रभु के सेवक ऊँचे ऊँचे, जो प्रभु अपनी सेवा लाया नान सो सेवक दे, दिस प्रगटाया नीकी गिरी में, कल राखे पसम करे लश्कर कोड लाखे जिसका।

प्रवलाकृदानि बारं बार बार प्रवजपिये पीयमरते हुमन तन त्रपिये नाम रतन जन गुरुमुख पाया तिसके छबर नाय दृष्टाय नाम तन नाम रूप रंग नाम सुखर नाम कसांग नाम रस जो जन तृप्ताने मन तन नामे नाम समाने उठत बैठ सोत नाम कहो नानक जन कह सदकाम बोलहो जास जेह बांध निराध प्रभु अपने जन कीनी दात बोलहो जास जेह बा दिन रात प्रभु अपने जन कीनी दात करहे भगत

जिन चाख्या से जन त्रिपता ने पूरन पुरख नहीं डोला ने सुभ्र भरे प्रेम रस रंग उपजाय चाव साध कै संग परे सरनान सब त्याग अंतर प्रगा संदन ले विलाग बुढ़भागी जपया प्रभ सोए नानक नाम रते सुख होए सेव किमन सब पूरी पई सतगुरु ते निर्मल मत लई जन को प्रभ दया जन को प्रभ होए दयाल सेव कीनो सदा निहाल बंधन काट मुक्त जन भया जन मरण दुख प्रभ गया अचपुनी सरदा सब पूरी रब रहया सतसंग हजूरी जिसका सा तिन लिया मिलाए नानक भक्ति नाम समाए सो क्यों बिसरै जे काल न भाने सो क्यों बिसरै जे किया जानक

मिटे प्राप कृपा ते प्राणी छुटाए। जिस ब्रह्म राखै तिस नाहीं दुख नाम, जपत मन सुख चिंता जाय। मिटे ओंकार तिस जन को कोई न पवित्र हार सिर उपर। ठाडा गुरसूरा नानक ताके कार्ज पूरा, मत पूरी अमृत जाकी दृष्ट। दर्शन पेख उदरत श्रेष्ठ, चरण कमल जाके रूप सफल। दर्शन सुंदर हर रूप, धन सेवा सेवक प्रवान। तरजमी पुरख प्रधान, जिस मन बसे सोत निहाल। ताके निकट अवत काल, अमर भय अमरा पद पाया। साध संग नान कर त्या श्लोक।

रंगा सरस्वती संत संग अंतरठा नाम प्रभु का लागा मीठा सगल समिग्री एक कड़मायन करंग नाना दृष्टा है नाव निधे अमृत प्रभु का नाम देहि मैस का विश्राम सुन समाद अणह तैनाद कह न जाई अचरज विस्माद तिन देखिया रिसाब दिखाए नानक तेजन सो जी पाए सो अंतर सो बाहर अनंत कट कट पे आप रहे आप भगवंत तरन वाहे आकाश प्याल सर्व लोक पूर्ण प्रतिपाल बंधन प्रबिध है पार ब्रह्म जैसी अग्नि तैसा करम।

संतना का भेखण सा ब्रह्म समझना के हृदय सब धर्म संत जना सुन है शुभ भजन सर्व्यापी राम संग्रचन जिन जाता तिसकी हिरायत सात बहन साधु सब कहत जो जो हो सोई सुख मान है करण करावन हार प्राव जान है अंतर बसे बार पी ओही नानक दर्शन दे सब ओही आप साधकिया सब साध तिस प्रभ ते सगली उत्पाद।

पे आप निरंजन सोए जिनसे व्यतन पाया मान नानक गाविय गुणी निदान गाविय सुनिए मन रखिए पाओ दुख पर हसो कर ल जाए गुरुमुख नादं गुरुमुख वेदं गुरुमुख रहा समाई।

न जाई। गुरा एक देह बुझाई, सब ना जिया का एक दाता, सो मैं विसर न जाई। तीर्थ नावा जित पावा, बिन पाने के नाई करी, जेती सिरठ उपाय वेखा, बिन कर्मा के मिला लई। मत विच रतन जवाहर माणिक, जेक गुर की सिख सुनी। गुरा एक देह बुझाई, सबना जिया का एक दाता, सो मैं विसर न जाई। जे जुग चार यार जा, होर दसुनी होए, नवा खंडा मित जानी है, नाल चल सब कोए।

गुरु सिख मन नानक भवन भिखो ऐसा नाम निरंजन होए जेखो मन जाने मन कोए पंच परवान पंच प्रधान पंचे पावें दरगह मान पंचा सोहेंदर राजान पंचा का गुरु एक ध्यान जेको कह कर विचार करते क्या करना नाही सुमार तौल धर्म दया का पूत संतोख थाप रखिया जन सूत जेको बुझ हुए सचियार तबला उपर किता पार तरती होर पराय होर होर तिस्ते भार तलै कमण जोर जी जात रंगा के नाम

अथमल नाऊं सब गुण तेरे मैं नाही कोए बिन गुण कीते भगत ना होए स्वास आर बाणी बरमाओ सत सुहाण सदा मंचाओ कवन सवेला वक्त कवन कवन तत कवन वार कवन सुरते मां कवन जित हुआ आकार

जाकरता श्री टी को साजया पैदाने सोई किव करे आखा किव सा लाही क्यों नी कव दाना नानके आखन सबको आख एक दो एक सियाणा

पवा सुमंद न जाने है। सुमंद सा सुल्तान गिरह सहते माल तन, कीड़े तुल न होने जित मन हो न विसरा। अंत न सिवते करना अंत, अंत न करना देर न अंत, अंत न वेखण सुनन ना अंत, अंत न जापै क्या मन मंत्र।

आख न सकै कोय, जेको खाए के आखन पाए, ओहो जान जेतिया मोह खाए। आपे जाने आपे दे आखे से पे के ही के, जिसनों बख्शे सिव सलाह, नानक पातशाही पातशाह।

केह जितबा सर्व संभाले वाजे नादा ने का शंका केते बावन हारे केते राग परिश्यो कयन केते गावन हारे गावे तो नुपौन पानी बैसंतर गावे राजा धर्म द्वारे गावे चित गुप्त लिख जाड़ है लिख लिख धर्म विचार।

ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड तिथे नाद विनोद कोड आनंद शर्म खंड के वाणी रोग तिथे काट करिए बहुत अनूप ताकि अगला कतिया न जाए देखो कह पिछे पछताए तिथे कड़िए सुरत मत मन बुद्ध तिथे कड़िए सुरा सदा की शुद्ध कर्म

परपंगे परमाथ संसदे बपुत कलंक बनाने कलंके स्वरूप नमो राजे सुरंग परम रूपे नमो जोग जुगे सुरंग परम सिद्धय नमो राजे सुरंग परम बिरदय नमो शस्त्रबाणे नमो अस्त्रबाणे नमो परम ज्ञाता नमो लोकमाता अपेकी अपरमी अपोगी अपोगते नमो जोग जुगे सुरंग परम जुगते

चतुर्थक्रमानि चतुर्थक्रदानि चातुरी छन्द न सत्र न मित्र न परम न पितर न कर्म न काय जन्म गाय न चित्र न मित्र पर पवित्राय परथिस्य अदृश्य अदृश्य कृश्य भगवती छंद प्रथा कथते के अछज देश के अभिज पेश के अगंज कर्म के अपंज परम के अभिज लोक के अदित शोक के अवतुत वर्ण के बबूत करने के राज प्रवाह के तर्म तुदाह के शोक वर्ण के सर्वा पर्ण के जगतंग कृतिया के छत्रंग छत्रिया के ब्रह्म स्वरूप के अनुभव अनुप के आद अदेव के आप अपेव के चित्रंग बहिन के अधीन के रोजी रजा के रही में रहा के पाक

केशवत्र त्राण केशवत्र प्राण केशवत्र देश केशवत्र पेश केशवत्र मान्य सदैव परदान्य केशवत्र जाप्य केशवत्र थाप्य केशवत्र पान केशवत्र मान केशवत्र इंद्र केशवत्र चंद्र केशरव कलिम के परम फहिम के आकल लाम के साहेब कलाम के सुनल बजू है तमामल तजू है हमे सुलसलाम सली कुदमुदाम गनी बुल सिक्त गरीब बरसते बेलंदल मुकान जमीनल जुमान तमी जुल तुमाम रजुअल निदान हरि फुल मिर जा की यकीन अनिकुल त्रंग भेद भंग जिजुल निवाज गनी मुल खिराज है निरुक्त स्वरूप त्रिमुक्त बभूत प्रभुक्त प्रभा सुयुक्त सुदा है सदैव स्वरूप अनुप संसत पराज सदा सर्वसाज है समस्त

सदगुरु प्रसाद पातशाह दसवीं तब प्रसाद स्वये श्रावक शुद्ध समूह सिद्धान के दिख प्रो कर जोग जति के सूर सुरार्दन शुद्ध शुद्धा दिख संत समूह अनेक मति के सारे हृदय को देख रहे मत को न देख प्राणपति के श्री भगवान के पाए कृपा उते करते बिनय करते के माते मतंग जरे जर संग अनुपतंग सुरंग सुवारे कोट तुरंग कुरंग से कूद

पर्वत पंखा ले नहलाएंगे, तोर हरीर मरोर मोहन मातम तंगन मान मलाएंगे, श्रीपा श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहान निधान चलाएंगे, वीर अपार बड़े बड़े आर बेचार सार की धार पसैया, तोर देश मलिंद मोहन मातक जान के मान मलैया, गाड़े गड़ान के तोड़न हर सो बात नहीं चकचार लवैया, साहेब श्री सबको सिर नायक जाचकन एक सो एक दवैया, दान दे फनंदन साचर भूत भविख

तुन पापन के बपुंज खपेंगे सासम प्रसन्न फिरे जग सत्र सब अवलोक चपेंगे मानव इंद्र गजेंद्र निरात जो अंतरलोक राज करेंगे कोट स्नान गजादिक दान अनेक स्वंबर साज बरेंगे ब्रह्म है सर्व विष्णु सचिव दंत जम्बाद परेंगे जे नर श्रीपत के परस है भगते नर फिर न दे तरेंगे।

जमन का सब जगत बनायो, देव दैत जच्छन उपजायो, आदि अंत के अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा, नमस्कार ते सिखो हमारी, सगल प्रजाजन आप सवारी सेवक।

एक एक की पीर पछाना है, कट कट के पड़ पड़ के जाना है, जब कर करा कर तारा, परदा तरत तब दे अपारा।

दुख दर्द पवन करना तन्नर के रह हो जो जाकी एक बार चौपाई को कह चौपाई संभ सत्रह साल पणि जाय अर्ध साल पंतन कह जय पाद्रव सुदय अष्टमे रविवार तीर सत द्रव ग्रंथ सुधारा स्वयं

गुरु प्रसाद आनंद पया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरु ता पाया सह सहती मन बजिया बधाइया राग रतन परिवार।

करता तेरा सब कुछ जिस देह स्वभाव सदा शिव सला तेरे नाम वसावे नाम जिनके मन वस्या वाद्य शब्द कनेरे कह नानी सच्चे साहिब क्या नाही कर तेरा साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जिन भुख सब गवाइया कर शांत सुख मन।

ना किचे जित अंत पछताई है। सतगुरु का उपदेश सुन तू होवे तेरा नाले कह नानक मन प्यारे तू सदा सच संभाले अगम अगोचरा तिरंत न पाया।

सुनाया पवित होए सेजना जिन्नी हरत्याया पवित होए गुरमुख जिन्नी त्याया पवित माता पिता कुटुंब सह सुप संग सवाया कह दे पवे सुन दे पवे से जिन्नी मन वसाया कह नानक से जिन गुरमुख हर हर त्याया

अनेक जने परमे अवैवण सतगुरु मुक्त न पाए, फिर मुक्त पाए लाग चरण सतगुरु शब्द सुनाए। कहे नानक विचार देखो बिन सतगुरु मुक्त न पाए, आवहो सिख सतगुरु के प्यारे हो गावहो सच्ची बाणी। बाणी

सतगुरु बिना होर कच्ची है बाणी, बाणी तां कच्ची सतगुरु बाजो होर कच्ची बाणी, कहंदे कच्चे सुनदे कच्चे कच्ची आख वखाणी, हर हर नित करें रसना कहया, कछु न जाने चजन कह लिया माया बोलन पैरवाणी, कह ना

सतगुरु मिलिया दिब दृष्ट होई, ए सरवण हो मेरे हो, साचे सुनना नो पठाए, साचे सुनना नो पठाए, श्रीला सुनो सत बाणी, जेत सुनी मंतन हरिया हुआ, रसना रस माणी।

ब्रह्म प्रपाया त्रे सकल विसूरे दुख रोग संताप त्रे सुनी सच्ची बाणी संत साजन भय सरसे पूरे गुरते जानी सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहया प्रपूरे।

अमृत नाम रसन नित जाप रोग रूप माया ना व्याप जप गोबिंद संगी सब तारी पोहत नाही पंच बटवारी मन बच क्रम प्रभ एक।

कहे मन विश्राम। हर का नाम दास की ओट, हर के नाम उदरे जन कोट, हर जस करत संत दिन रात, हर हर औखद साधक मात। हर जन के हर नाम निदान, पार ब्रह्म जन की नो दान, मन तन रंग रते रंग कै, नानक जन कै बिरत बिकै। हर का नाम जन को मुक्त जुगत, हर के नाम जन को त्रिवत भुगत, हर का नाम जन का रूप रंग, हर नाम जबत कब परे ना भंग। हर का नाम जन की वडियाई, हर कै नाम जन शोभा पाई, हर का नाम जन को भोग जोग, हर नाम जपत कछ नाहे बियोग। जन राता हर नाम की सेवा, नानक पूजे हर हर देवा, हर हर जन कै मालिक जीना, हर धन जन को आप प्रभ दीना। हर हर जन कै ओट सुतानी, हर प्रताप जन अवर न जानी, ओत पोत जन हर रस राते, सुन समाद नाम रस माते। आठ पैर जन हर हर जपै, हर का भगत प्रगट नहीं छपै, हर की भगत मुगत बहु करे, नानक जन संकेते तरे। पार जात्यो हर को नाम, काम तेन हर हर गुण गाम, सब ते उत्तम हर की कथा, नाम सुनत दर्द दुख लथा, नाम की महिमा संत रिद वसै, संत प्रताप दुर्त सब नसै।

ते जन सह संवात सुनयंदा कैसे मार्ग पावे कर गल्योड़ निभावे काम जारत बूझे डोरा नस्कहिए तो समझे पूरा कहां बिशन पद गावे गोंगा जतन करे तो पी सुर

नानक तुमरी कृपा तरै सांग सुहाई सो आवे ना चीत जो बराई ता स्यो प्रीत बलुआ कह ग्रह पीतर वसे अणद केल माया रंग रसै दृढ़ कर माने मने प्रतीत काल न आवे मूढ़े चीत बैर विरोध काम क्रोध मोह झूठ विकार मां लोभ त्रोह।

रास दियो पिंड सब तेरी रास तुम मात पिता हम बारक तेरे तुमरी कृपा मैं सुख कनेरे कोई न जाने तुमरा अंत उच्चे ते उच्चा भगवंता सगल समग्री तुमरे सूत्र धारी तुम तो सुआग्ञाकारी

केहे मन हर के नाम की प्रीत सुखदाई कर कृपा नानक आप लै लाई। मिथ्या तन धन कुटुंब सुभाया मिथ्या होमे ममता माया मिथ्या राज जोबन धन माल मिथ्या काम क्रोध बिकराल मिथ्या रथ हस्ती अस वस्त्रा मिथ्या रंग संग माया पी खस्ता मिथ्या त्रो मोह अभमान मिथ्या आपसी ऊपर करत गुमान अस्त्र भगत साध की शरण नानक जप जप जीवे हर के चरण। मिथ्या सरवण पर निंदा सुने मिथ्या हस्त पर दर्ब को हिरे मिथ्या नेत्र पेखत पर तिरै रूपाद मिथ्या रसना भोजन अन सुवाद मिथ्या चरण पर बेकार को तावे मिथ्या मन पर लोभ लुभावे मिथ्या तन नहीं पर उपकारा।

जय प्रसाद पाठ पटंबर हंडावे तसे त्याग कत्यवर लुभावे। जय प्रसाद सुख सेज सुई जय मन आठ पैर तांका जस गावी जय। जय प्रसाद तुझ सब को मान मुख तांको जस रसन बखान। जय प्रसाद तिरु रहता धर्म मन सदा त्याय केवल पार ब्रह्म। प्रभ जी जबत दरगे मान पावे नानक पात सेती घर जावे। जय प्रसाद अरोग कंचन देही लिवलावत सुराम स्नेही। जय प्रसाद तिरावला रहत मन सुख पावे हर हर जस कहत। जय प्रसाद तेरे सगल छिद्र ढाके मन सरणी पर ठाकुर प्रभ तांके। जय प्रसाद तुझ को ना पहुंचे मन साथ साथ सिमरो प्रभु चे। जय प्रसाद पाई दुर्लभ देहे नानक ताकी भगत करे। जय प्रसाद या भूखन पहरी जय मन तिस सिमरत क्यों आलस की जय। जय प्रसाद अशुभ हस्त अशुवारी मन तिस प्रभ को कबू ना बिसारी। जय प्रसाद बाग मिल्ख तना राख

उठत बैठत सद तिसे त्याई, तिसे त्याए जो एक अलखै, इहां उहां नानक तेरी रखै। जय प्रसाद करे पुन बवदान, मन आठ पैर कर तिसका ध्यान। जय प्रसाद आचार बिहारी, तिस प्रभु को साथ साथ चितारी।

प्रसाद नानक जस कह। जय प्रसाद सुने करन नाद, जय प्रसाद भेखे बसमाद, जय प्रसाद बोले अमृत रसना, जय प्रसाद सुख सहजे बसना, जय प्रसाद हस्त कर चलै, जय प्रसाद संपूर्ण फलै।

की अचरज कथा इष्ट परी साधु कै संग मुख उजल होत साध संग मल सगली खोत साधक संग मिटे अभिमान साधक संग प्रगटे सो ज्ञान साधु कै संग बुझे प्रभ नेरा साध संग सब होत नबेरा साधक संग पाए नाम रतन साधक संग एक ऊपर जतन साध की महिमा बरने कौन पुरानी नानक साध की शोभा प्रभ है सुम

बस पंचा साध संग अमृत रस पुंचा साध संग सबकी देन साधक संग मनोहर बैन साधक संग न कतु तावे साध संग अस्तत मन पावे।

साधु कह संग सबको ले उधारे साध संग साजन मीत गुटा मन सुतारे साधु कह संग सो धन पावे जे धन ते सबको वरसावे साध संग धर्म राय करे सेवा साधु कह संग शोभा सुर देवा।

कै संग सफर जनामय। साध कै संग नहीं कछ काल, दर्शन पेट त्योत निहाल। साधक संग कलूख तरै, साधक संग नरक पर हरै। साध कै संग इहां उहां सुहेला, साध संग बिछर तर मेला। जो इच्छे सोई फल पावे, साधु कै संग ना बिरथा जावे। पार ब्रह्म साध रिद वसै, नानक उतरे साध सुन रसै। साधु कै संग सुनो हरनाओ, साध संग हर के गुण गाओ। साधु कै संग ना मन ते बिसरै, साध संग सर पर निस्तरै। साधु कै संग लगे प्रै मीठा, साधु कै संग घट घट डीठा। साध संग पै आग्याकारी, साध संग गत पई हमारी। साध कै संग मिटे सब रोग, नानक साध भेटे संजोग। साध की महिमा वेद ना जान है, जेता सुने ते तब ख्यान है। साध की उपमा ते गुण ते दूर, साध की उपमा रही भरपूर। साध की शोभा का नाही अंत, साध की शोभा सदा बेअंत। साध की शोभा उचते उची, साध की शोभा मूचते मूची।

ब्रह्म ज्ञानी होए अष्टपदी। ब्रह्म ज्ञानी सदा नर लेप जैसे जल में कमलिया लेप। ब्रह्म ज्ञानी सदा नर दोख जैसे सूर सर्व को सोख। ब्रह्म ज्ञानी कै दृष्ट सुमान जैसे राज रंक को लागे तुल पवान। ब्रह्म ज्ञानी कै धीर जे क ज्यों बसदा कुख।

तरस जैसे तारे ऊपर आकाश। ब्रह्म ज्ञानी कह मित्र सतर सुमान, ब्रह्म ज्ञानी कह नाही अभिमान। ब्रह्म ज्ञानी उचते उचा मन अपने है सब ते नीचा। ब्रह्म ज्ञानी से जन पे नानक जिन प्रभु आप करे। ब्रह्म ज्ञानी सगल की रीना तम रस, ब्रह्म ज्ञानी चीना। ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर मया, ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा ना भया। ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी, ब्रह्म ज्ञानी की दृष्टि अमृत बरसी। ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता, ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता। ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान, नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान। ब्रह्म ज्ञानी एक ऊपर आस, ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश। ब्रह्म ज्ञानी का

कथया ना जाय दे अखर ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखान है ब्रह्म ज्ञानी की गात ब्रह्म ज्ञानी जान है ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार।

ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरख विधाता, ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सभी ऊपर हाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सगले आकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार, ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी, नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का धनी सलोक, और तारे जो अंतर नाम सर में पेखे भगवान, निमुख निमुख ठाकर नमस्कारे, नानक परस सगल निस्तारे, अष्टपदी मिथ्या नाही रसना परस, मन में प्रीत निरंजन दर्श, पर तेरे रूप न पेखे नेत्र, साध की टहल संत संग हेत,

जिस लिखिया तुर करम जिसके मन पार ब्रह्म कन वास तिसका नाम सत राम दास आत्म राम तिस नदरी आया दास दुसंतन पाए तिन पाया सदा निकट निकटर जान सोदा दरके परवान अपने दास को आप कृपा करे तिस दास को सब सोजी पर सल संग आत्मी उदास वैसी जुगत नानक राम।

प्रभ रचि बहुबिधि अनक प्रकार अष्टपदी। कई कोट होए पुजारी, कई कोट आचार बिहारी, कई कोट पै तीर्थवासी, कई कोट बन भरमे उदासी, कई कोट वेद के स्रोते, कई कोट तपीसर होते, कई कोट आत्म ध्यान धारे, कई कोट कव का विचारे, कई कोट नवतर नाम त्यावे, नानक करते कांत न पावे।

नानक करते की जाने करता रचना। कई कोट सिद्ध जति जोगी, कई कोट राजे रस भोगी, कई कोट पंखी सर्प उपाए, कई कोट पाथर ब्रिख निप जाए, कई कोट पवन पानी बैसंतर, कई कोट देश भूमंडल, कई कोट ससियर सूरन खेतर, कई कोट देवदान विंदर सिर छतर, सगल समग्री अपने सूत तारे, नानक जिस जिस भावे तिस तिस निसतारे, कई कोट राजस तामस सातक, कई कोट वेद प्राण सिमर तेर शास्त्र, कई कोट कीर्तन समोंदा, कई कोट नाना प्रकार जंत, कई कोट किए चर जीव, कई कोट गिरी मेर स्वर्ण थीव, कई कोट जख किन्नर पसाच, कई कोट भूत सुकर मृगाच, कई कोट भूत प्रेत सुकर मृगाच, सब ते नेरे सब हूं ते दूर, नानक आप लवितरिया भरपूर, कई कोट पाताल के वासी, कई कोट नरक सुरगन वासी, कई कोट जन्मे जीवे मरै, कई कोट बजूनी फिरै।

पाथर तरावे प्रभ भावे बिनसात राखे प्रभ भावे ता हर गुण भाखे प्रभ भावे ता पत ते उधारे आप करे आपन बिचारे दुआ सिरिया का आप स्वामी खेले बिकसे अंतर जामी जो भावे सो कार करावे नानक दृष्टि अवरण आवे कहो मानुख ते क्या हुए आवे जो तिस भावे सोई करावे इसके आत हुए ता सब की छिले जो तिस भावे सोई करे अनजानत बिख्या मैं रचे जे जानते अपने आप बचे पर मैं पूला दै दिस तावे निमख मैं चार कुंट फिर आवे

तिस तत काल दह दस प्रगटावे। जाको अपनी करे बगसीसा ता का लेखा न गने जगदीसा, जियो पिंड सब तिसकी दास, घट घट पूर्ण ब्रह्म प्रगास। अपनी बणत आप बनाई, नानक जीवे देख बढ़ाई, इसका बल नाई इस हाथ, करन करावन सर्ब को नाथ। आज्ञाकारी बपरा जियो, जो तिस पावे सोई फुन थियो। कबू उच नीच मैं बसे, कबू सो घर करांग हसे, कबू निंद चिंद बिहार, कबू बकास प्याल, कबू बेता ब्रह्म विचार, नानक्या मिलावन हार। कबू नृत करे बपा।

का साजर। कबहू अपकीर्त में आवे कबहू भला भला को आवे, ज्यों प्रभ राखे ते वीर है गुर प्रसाद नानक सच कहे। कबू होए पंडित करे बखियान कबू मुण धारी लावे ध्यान, कबू तट तीर्थ स्नान कबू सिद्ध साधक मुख ज्ञान। कबू कीटस्त पतंग जियान जून भरमे परमैया, नाना रूप ज्यों सुभागी दुखावे, ज्यों प्रभावे तिवे नचावे।

अनुसार जैसी दृढ़ करे तैसा होए आपे आप आप प्रभ सोए जोग जकीनो सो अपने रंग सब ते दूर सबूं का सांग बुझे देखे करे बबेक आपे कापे अनेक मरे ना बिनसे आवे ना जाए नानक सादी रहा सुमाए आप उपदेसे समझे आप आपे रचिया सबके साथ आप कीनो आपन विस्थार सब काचे उसका ओए करने हार उस दे पिन कहो किछ होए थान थनन।

संत के दुखी की जड़ किछ नाहे, आपन भी जापे ही खाहे। संत के दुखी कवर न राखन हार, नानक संत पावे तां ले उबार। संत का दुखी उंबल लाए, ज्यों जल बिहून मछली तड़फड़ाए। संत का दुखी भूखा नहीं राजे, ज्यों पाव कीर्तन नहीं त्रापै। संत का दुखी छुटे अकेला, ज्यों बुवाड़ तिल खेत मैं दुहेला। संत का दुखी धर्म ते रहत, संत का दुखी सद मिथ्या कहत। किरत निंद का तुरही पया, नानक जो तिस भावे सोई थे आ। संत का दुखी बिगड़ रूप होए जाए, संत के दुखी को दरगह मिले सुजाए। संत का दुखी सदा सहकाइये, संत का दुखी ना मरे ना जीवाइये। संत के दुखी की पुजे न आसा, संत का दुखी उठ चले निराशा। संत का दुख न त्रेटे को है, जैसा पावे तैसा कोई होए। पया किरत न मेटे को है, नानक जाने सच्चा सोए। सब घड़ तिसकी होए करने हार, सदा

अलख अपीब पुरख परताप, आप जपाए तनानक जाप। जिन प्रभ जाता सो सोभावंत, सगल संसार उदरे तिन मंत। प्रभ के सेवक सगले उदारण, प्रभ के सेवक दुख बसारण। आपे मेल लय कृपाल, गुर का शब्द जप पै निहाल। उनकी सेवा सोई लागे, जिसनु कृपा करे बड भाग। नाम जपत पावे बिश्राम, नानक तिन पुरख को उत्तम करमान। जो किछ करे सो प्रभ कै रंग, सदा सदा बसे अर संग। सह सुभाए होवे सोए, करणे आर पछाणे सोए।

साध सेवा वडभागी पाइये सा संगर कीर्तन गाइये अनक बिघन ते साधु राखे हर गुण गाए अमृत रस चाखे ओट गही संते दरियाया सर्व सुख नानक ते पाया मृत को जीवालन हार भूखे को देवते आधार सर्वन दान जाकी दृष्टि माहे पुरब लिखे का लहना पाए सब किछ तिस कायो करने जोग तिस बिन दूसर हुआ ना होग जप जन सदा सदा दिन रहनी सबती उच निर्मले करनी

प्रसन्न अष्टपति अवनासी ब्राह्मण में राख मानो की तू प्री त्याग तिस्ते परे नाई किच को सर्व निरंतर एको सोय आपे बीना आपे दाना गहर गंभीर गहीर सुजाना पार ब्रह्म परमेश्वर गोविंद कृपा निधान दयाल भगसांद।

सब ठाए, नाना बिदकर बणत बनाई, अपनी कीमत आपे पाई, सब कट तिसके सब तिसके ठाओ, जप जप जीवै नानक हर नाओ, नाम के तारे सगले जंत, नाम के तारे खंड ब्रह्मांड, नाम के तारे सिमरत वेद पुराण, नाम के तारे सुरन ज्ञान ध्यान, नाम के तारे अगास पाताल, नाम के तारे सगले अकार, नाम के तारे पुरिया सा भवन, नाम के संग उदरे सुन सरवण,

ठाकर का सेवक आज्ञाकारी, ठाकर का सेवक सदा पुजारी, ठाकर के सेवक है मन प्रतीत, ठाकर के सेवक की निर्मल रीत, ठाकर को सेवक जाने सांग, प्रभु का सेवक नाम के रंग, सेवक को प्रपालन हारा, सेवक की राखे निरंकारा, सो सेवक जिस दया प्रभु तारे, नानक सो सेवक सास सास मारे, अपने जन का पर्दा ढाके, अपने सेवक की सर पर राखे, अपने दास को देव डाई, अपने सेवक को नाम जपाई, अपने सेवक की आपात राखे, ताकि गत मित कोय न लाखे, प्रभु के सेवक को ना पहुंचे, प्रभु के सेवक उचते उचे, जो प्रभु अपनी सेवा लाया, नानक सो सेवक दह दिस प्रगटाया, निकी कीरी मैं कल राखे, भसम करे लश्कर कोट लाखे, जिसका शासन काटते आप, ताको राख देकर हाथ,

राखा सोए काहे सोच करे रे प्राणी, जप नानक प्रभ लख वडाणी। बारंबार बार प्रभ जपिए पी अमृत, एहो मन तन त्रपिए। नाम रतन जिन गुरमुख पाया, तिस किछ अवरनाई दृष्टाया। नाम धन नाम रूप रंग, नाम सोखर नाम का संग। नाम रस जो जंत्र बताने, मन तन नामे नाम समाने। ऊठत बैठत सोवत नाम, कहो नानक जन कै सदकाम। बोलो जस जेबा दिन रात, प्रभ अपने जन कीनी दात। करे भगत आत्म कह चाहे, प्रभ अपने स्यों रहे समाए। जो हुआ होत सो जाने, प्रभ अपने का हुकुम पछाने। तिस

सर्वनरंतराय को सोएं ओद बोधरव्या रूप रंग भय प्रगा साध कै सांग राज रचना अपनी कल धारी अनकबार नानक।

उदार, हर हर सिमर प्राणे उदार, अनक्यो पावना छूटन हारे सिमरत सात बेद विचारे, हर की भगत करो मन लाए मन बंशत नानक।

पष्ट बरी जाभ्य कार्य काछ ना दृष्टिता पापुन तब कहते होता जब धारी आपन सुन समाद तब बैर विरोध के संक मात जा विस्का वरण चेरना जापत।

जिस आप दिखाए नानक तिस जन सो जी पाए। सो अंतर सो बार अनंत घड़ घड़ ब्याप रहा भगवंतरण में आकाश प्याल सर्वलोक पूर्ण प्रत पाल।

मन मांग। आप छोड़ बेनती करो, साध संग गुण सागर तरो, अर्तन के पर लेहो भंडार, नानक गुरु पूरे नमस्कार। हेम कुशल सहज आनंद, साध संग भज परमानंद।

सुन सुन अंत करे प्रव गाजे प्रगटे गोपाल महाद के माथे नानक उधर तिन कै साथे सरन जोग सुन सरणी आए कर कृपा प्रव आप मिलाए मिट गए बैर पए सबरे नम्रत नाम साध संगलैन सो प्रसन्न पए गुरदेव पूर्ण होई सेवकी सेवाल जंजाल विकार ते रहते राम नाम सुन रसना कहते।